0: बताएगा जी नाम क्या है?
1: बताएगा है
0: बताएगा जी बैक एंड क्वार्टर्स
1: हैव यू बैक एंड क्वार्टर्स ऑफ 1420
0: Allen County, you can show 1972 and quarters.
1: Copy, Medic 72, also on quarters.